पौड़ी तृतीया त्रैगुण विखै फल कब उत्तम कब नीच नरक सुर्ग ब्रह्म तौ कणो सदा संघार मीच हरख सोग सहसा संसार हों हों करत बिहाए जिन किए तिसह न जाननी

जिन की है, जिन्हें पैदा किया, जिन्हें सरजिया, जिन्हें सब कुछ दिता, उन्हों जानदा नहीं। चित वह अनको उपाय, होर कई तरह के उपाओ चित बदा रहिंदा है, सोचा दे घोड़े दड़ाउंदा रहिंदा है। बंदा कुछ ना कुछ सोचते ही रहिंदा है, कल्ला बैठा होवे तां भी, जिथे भी कोई काम करदा है तां भी, उहदी सुरती दे विच टिका बहुत घट, सहज बहुत घट, ते बस उहदियां सोचां चलदियां रहिंदियां ने। अज ते कुछ मनुख दा वर्तारा कुछ ज्यादा नजर आ रहा ऐसा। महाराज कहिंदे अनेकां तरह दियां मन दे अंदर चिंतावां चलदियां रहिंदियां ने, जदों के सानू महाराज ने इस पासे मना भी कीता है भी उस परमात्मा नू चेते करो, ते उस परमात्मा नू चेते करो, चिंता करन दी लोड नहीं है, उनू ही सारियां दा फिकर है। पर अज की कह रहे ने, कहिंदे आद बेआद उपाद रस कब हो न टूटे है ताप। और थोड़ा ध्यान देना, उपर तीन गुणा का जिक्र सी, रजगुण तम गुण सतगुण कही है, इथे आया तीन नाम होर आए ने, आद ब्याद उपाद, तीन तरह के रोग दुख, ये आद ब्याद ते उपाद, इन्हों की व्याख्या वक्री वक्री है। कुछ शरीरक रोग बीमारियां ठमारियां, कुछ एक नैचुरली जड़ियां कुदरती आफत आउंदियां ने, हड़ आ गए, भूचाल आ गए, कोई बीमारी फैल गई इत्यादक, कुछ हुंदा कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ होर वर्तारा ऐसा वापर गया, ये मतलब की है। इन्हां दी वक्री वक्री विद्वान लोगों ने व्याख्या की है, पर आदियां ब्यादियां उपाधियां इहदे विच ही आपां सारे किते ना किते फसे हुए हैं, ये सानूं फेस करनियां पैंदियां ने। महाराज कहिंदे भाई कबो हो ना टूटा ताप, इन्हां दा प्रभाव बनिया रहिंदा, कदे कोई प्रॉब्लम आ गई, कदे कोई प्रॉब्लम आ गई, कदे कोई शरीरक प्रॉब्लम आ गई, कदे कोई आर्थिक प्रॉब्लम आ गई, जां कोई इस तरह का वर्तारा वापरे, जिवें पिछले दौर दे विच असीं वेखिया पूरी दुनिया करोना दी मार हेठ आई, पूरे जगत दे विच वर्तारा वापरे आ। पर महाराज इत्थे की कहिंदे ने, कहिंदे कब हुन न टूटै ताप, पार ब्रह्म पूरन धनी नह बूझै प्रताप। पर मनुख परमेश्वर नूं, उहदे प्रताप नूं जिहड़ा पूरन है अपने आप दे विच, होर कोई पूरन नहीं है, इत्थे सारे अपूरन ने, अधूरे ने, पूरन एक परमात्मा, उहदे लई महाराज ने शब्द वरते ने आद पूरन मद पूरन, मद पूरन मद आद पूरन मद पूरन अंत पूरन परमेश्वर है, ते उह पहलां भी पूरन सी, हुण भी पूरा है, अगां भी पूरा होवेगा। मनुख पहला भी अधूरा सी, हुण भी अधूरा है, कोशिश भावें कर रहे है, यतन भावें शुरुआत तो कर रहे है, लग्या होया भी मैं पूरा हो जा, पर पूरा नहीं हो रहा, पूरे का अंत पाने की भी कोशिश कर रहे है। इनू इस पास्यों भी पूरी सफलता पूरी कामयाबी जिहड़ी है वो नसीब हुंदी नजर नहीं आ रही, होनी भी नहीं। महाराज ने तो बाणी च कहा होया भी ऐसे बहुत हुए ने, अंत ना सिफती कह ना अंत आला वचन जो पढ़ते हैं, उत्थे कहता सी अंत कारण केते बिल लाहे ताके अंत ना पाए जाए। पर फिर भी मनुख जेड़ा सी वो अपनी हर तरह की कोशिश कर रहा है, यतन कर रहा। महाराज कहिंदे जेड़ा परमेश्वर है, पार ब्रह्म है, पूरन है, धनी है, धनी का अर्थ इत्थे तनाड़ तो नहीं है, धनी का इत्थे मीनज है जेड़ा सारियां दा मालक है, सारियां दा मालक है जेड़ा नह बूझे प्रताप। सब कहिंदे ए मनुख किते ना किते रजोगुणी तमोगुणी होण करके उहदे प्रताप नूं नहीं समझदा। असीं परमात्मा दा प्रताप नहीं समझिया, परमात्मा दा प्रताप बड़ा वड्डा है, पावर बड़ी वड्डी है, समर्था बड़ी वड्डी है, सारा संसार दा क्रिएटर है, उहो जनरेटर है, उहदा ऑपरेटर है, उहदा उहो इहनूं चला रिहा है, इहनूं बना सिरजिया उहने, कंट्रोल उहदा। ताही तो महाराज ने कहा तू इस पासे चिंता ना करिया कर, उहनूं सारियां दा फिकर है। और महाराज सच्चे पातशाह जी की कहिंदे, कहिंदे भाई नह बूझे प्रताप, उहदे प्रताप नूं समझण दा यतन कर, वैसे उहदा जिहड़ा हुक्म चल रहा उस हुक्म नूं समझ, उह हुक्म दे विच आ, हुक्म दे विच ही सारा कुछ, किड्डा प्रताप है उहदा, किड्डा कंट्रोल है, सूरज चंद्रमा धरती आकाश पौण पाणी हवा सब कुछ उहदे हुक्म तो अंदर ने, हुक्म तो बाहर थोड़ो ने।
ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਬਈ ਹੁਕਮ ਹੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ, ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਈ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਚੌਥੀ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਰਿਆ ਪਾਵੈ ਕੋਏ, ਉਹ ਸੰਤ ਜਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਹ ਭਰਮ ਬੂੜਤ ਕਹਿਣੋ ਮਹਾ ਨਰਕ ਮਹਿਵਾਸ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਡੁੱਬੇਗਾ। ਮੋਹ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਡੋਬ ਲੈਂਦਾ, ਭਰਮ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਤਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਲਈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾ ਨਰਕ ਮੈਂ ਵਾਸ, ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਕੋਈ ਐਸੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ, ਭਰਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕੰਡ ਕਰਦਾ,

महिमा की लिख सकता, महिमा हुंदी ना बयान कदे भी सतगुर दी। खैरा की लिख सकता, खैरा लिख सकता, ओ खैरा की।

आप जी के हजूर पंचामृत कड़ा प्रसाद हाजिर है, दर प्रवान होवे प्रवान होया प्रसाद, संगत विच वरतौण दी आग्या बख्शो, दर आई संगत दियां हाजरियां पेटावां दर प्रवान करनियां, शुभ मनोकामनावां गुरमत अनुसार पूरियां करनियां, समूह परिवारां नूं आपसी प्यार इतफाक सुख।

0: राम राज
1: देग तेग पंथ की राज करेगा झूलते निशान रहे लागते दीवान रहे
2: वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

ना लिखन हार। मन्ने का बह करन विचार ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए। मन्नै सुरत होवै मन बुद्ध, मन्नै सगल भवन की सुध। मन्नै मुहे चोटा ना खाए, मन्नै जाम कै साथ ना जाए। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए। मन्नै मार्ग ठाक ना पाए, मन्नै पत स्यो प्रगट जाए। मन्नै मग ना चलै पंथ, मन्नै धर्म सेती संबंध। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए। मन्नै पावह मोख द्वार, मन्नै परवारै साधार। मन्नै तरै तारे गुर सिख, मन्नै नानक भवह न भिख। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए। पंच परवान पंच प्रधान, पंचे पावह दरगह मान। पंचे सोह है दार राजान, पंचा का गुर एक त्यान। जे को कह करै विचार, करते कह करन नाही सुमार। धौल धर्म दया का पूत, संतोख थाप रखिया जिन सूत। जे को बुझै होवै सचियार, धवलै उपर किता भार। धरती होर परै होर होर, तिस्ते भार तलै कमन जोर। जी जात रंगा के नाव, सबना लिखिया बुढ़ी कलाम। एहो लेखा लिख जाने कोए, लेखा लिखिया केता होए केता तान। सुआले हो रूप केती दात, जाने कौन कूत। कीता पसाओ एको कवाओ, तिस्ते होए लख दरियाओ। कुदरत कवन कहा विचार, वारिया ना जावा एक वार। जो तुद भावै साई भलीकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख जप असंख भाओ, असंख पूजा असंख तप ताओ। असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मन रह है उदास। असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार। असंख सूर मोह भख सार, असंख मोन लिव लाए तार। कुदरत कवन कहा विचार, वारिया ना जावा एक वार। जो तुद भावै साई भलीकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख मूरख अंध कोर, असंख चोर हराम खोर। असंख अमर कर जाहे जोर, असंख गाल वड हत्या कमाहे। असंख पापी पाप कर जाहे, असंख कूड़ियार कूड़े फिराहे। असंख मलेच्छ मल भख खाहे, असंख निंदक सिर करहै भार। नानक नीच कहै विचार, वारिया ना जावा एक वार। जो तुद भावै साई भलीकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लोह। असंख कहै सिर भार होए, अखरी नाम अखरी सालाह। अखरी ज्ञान गीत गुण गाह, अखरी लिखन बोलन बाण। अखरा सिर संजोग वखान, जिन एह लिखे तिस सिर नाहे। जिव फुरमाए तिव तिव पाहे, जेता कीता तेता नाओ। बिन नावै नाही को थाओ, कुदरत कमन कहा विचार, वारिया ना जावा एक वार। जो तुद भावै साई भलीकार, तू सदा सलामत निरंकार। भरियै हाथ पैर तन देह, पानी धोतै उत्तर सोखेह। मूत पलीती कपड़ होए, दे साबून लइयै ओह धोए। भरियै मत पापा कै संग, ओह धोपै नावै कै रंग। पुन्नी पापी आखन नाहे, कर कर करना लिख लै जाहो। आपे बीज आपे ही खाहो, नानक हुक्मी आवहु जाहु। तीरथ तप दया दत दान, जे को पावै तिल का मान। सुनिया मन्या मन कीता भाओ, अंतरगत तीरथ मल नाओ। सब गुण तेरे।

ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਬਹੁ ਲੱਖ ਹੋਹੇ ਲੱਖ ਹੋਵਹਿ ਲੱਖ ਵੀਸ ਲੱਖ ਲੱਖ ਗੇੜਾ ਆਖੀਐ ਹੈ ਏਕ ਨਾਮ ਜਗਦੀਸ ਏ ਤੁਰਾਹੇ ਪਤ ਪਵੜੀਆ ਚੜੀਐ ਹੋਏ ਇੱਕੀਸ ਸੁਣ ਗੱਲਾ ਆਕਾਸ ਕੀ ਕੀਟਾ ਆਈ ਰੀਸ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਈਐ ਕੂੜੇ ਕੂੜੈ ਠੀਸ ਆਖਣ ਜੋਰ ਚੁੱਪੈ ਨਹਿ ਜੋਰ ਜੋਰ ਨਾ ਮੰਗਣ ਦੇਣ ਨਾ ਜੋਰ ਜੋਰ ਨਾ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਨਹਿ ਜੋਰ ਜੋਰ ਨਾ ਰਾਜ ਮਾਲ ਮਨ ਸੋਰ ਜੋਰ ਨਾ ਸੁਰਤੀ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ ਜੋਰ ਨਾ ਜੁਗਤੀ ਛੁੱਟੈ ਸੰਸਾਰ ਜਿਸ ਹੱਥ ਜੋਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸੋਏ ਨਾਨਕ ਉੱਤਮ ਨੀਚ ਨਾ ਕੋਏ ਰਾਤੀ ਰੁੱਤੀ ਥਿੱਤੀ ਵਾਰ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਪਾਤਾਲ ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਥਾਪ ਰੱਖੀ ਧਰਮਸਾਲ ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜੁਗਤ ਕੇ ਰੰਗ ਤਿੰਨ ਕੇ ਨਾਮ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤ ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ ਸੱਚਾ ਆਪ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ ਤਿੱਥੈ ਸੋਹਨ ਪੰਚ ਪਰਵਾਨ ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਪਵੈ ਨੀਸਾਨ ਕੱਚ ਪਕਾਈ ਉਥੈ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਗਇਆ ਜਾਪੈ ਜਾਏ ਧਰਮ ਖੰਡ ਕਾ ਇਹੋ ਧਰਮ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਕਾ ਆਖੋ ਕਰਮ ਕੇਤੇ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਵੈ ਸੰਤਰ ਕੇਤੇ ਕਾਨ ਮਹੇਸ਼ ਕੇਤੇ ਬਰਮੇ ਘਾੜਤ ਘੜੀਆ ਹੈ ਰੂਪ ਰੰਗ ਕੇ ਵੇਸ ਕੇਤੀਆ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਮੇਰ ਕੇਤੇ ਕੇਤੇ ਧੂ ਉਪਦੇਸ ਕੇਤੇ ਇੰਦ ਚੰਦ ਸੂਰ ਕੇਤੇ ਕੇਤੇ ਮੰਡਲ ਦੇਸ ਕੇਤੇ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਨਾਥ ਕੇਤੇ ਕੇਤੇ ਦੇਵੀ ਵੇਸ ਕੇਤੇ ਦੇਵ ਦਾਨਵ ਮੁਨ ਕੇਤੇ ਕੇਤੇ ਰਤਨ ਸਮੁੰਦ ਕੇਤੀਆ ਖਾਣੀ ਕੇਤੀਆ ਬਾਣੀ ਕੇਤੇ ਪਾਤ ਨਰਿੰਦ ਕੇਤੀਆ ਸੁਰਤੀ ਸੇਵਕ ਕੇਤੇ ਨਾਨਕ ਅੰਤ ਨਾ ਅੰਤ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਮਹਿ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਚੰਡ ਤਿੱਥੈ ਨਾਦ ਵਿਨੋਦ ਕੋਡ ਆਨੰਦ ਸਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਰੂਪ ਤਿੱਥੈ ਘਾੜਤ ਘੜੀਐ ਬਹੁਤ ਅਨੂਪ ਤਾ ਕੀਆ ਗੱਲਾ ਕਥੀਆ ਨਾ ਜਾਹੇ ਜੇ ਕੋ ਕਹੈ ਪਿਛੈ ਪਛੁਤਾਏ ਤਿੱਥੈ ਘੜੀਐ ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ ਬੁੱਧ ਤਿੱਥੈ ਘੜੀਐ ਸੁਰਾ ਸਿੱਧਾ ਕੀ ਸੁਧ ਕਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜੋਰ ਤਿੱਥੈ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਿੱਥੈ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ ਤਿੰਨ ਮਹਿ ਰਾਮ ਰਹਿਆ ਭਾਰਪੂਰ ਤਿੱਥੈ ਸੀਤੋ ਸੀਤਾ ਮਹਿਮਾ ਮਾਹੇ ਤਾ ਕੇ ਰੂਪ ਨਾ ਕਥਨੇ ਜਾਹੇ ਨਾ ਓਹੇ ਮਰ ਹੈ ਨਾ ਠਾਗੇ ਜਾਹੇ ਜਿਨ ਕੈ ਰਾਮ ਵਸੈ ਮਨ ਮਾਹੇ ਤਿੱਥੈ ਭਗਤ ਵਸੈ ਕੇ ਲੋ ਕਰਹਿ ਆਨੰਦ ਸੱਚਾ ਮਨ ਸੋਏ ਸੱਚ ਖੰਡ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਤਿੱਥੈ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰ ਭੰਡ ਜੇ ਕੋ ਕਥੈ ਤਾ ਅੰਤ ਨਾ ਅੰਤ ਤਿੱਥੈ ਲੋ ਲੋ ਆਕਾਰ ਜਿਵ ਜਿਵ ਹੁਕਮ ਤਿਵੈ ਤਿਵਕਾਰ ਵੇਖੈ ਵਿਗਸੈ ਕਰ ਵਿਚਾਰ ਨਾਨਕ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ ਜਤ ਪਾਹਾਰਾ ਧੀਰਜ ਸੁਨਿਆਰ ਅਹਿਰਨ ਮਤ ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ ਭਉ ਖੱਲਾ ਅਗਨ ਤਪ ਤਾਉ ਭਾਂਡਾ ਭਾਉ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਤ ਢਾਲ ਘੜੀਐ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ ਜਿਨ ਕਉ ਨਦਰ ਕਰਮ ਤਿਨ ਕਾਰ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਸਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੁਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖਿਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆ ਬੁਰਿਆਈਆ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੈ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ ਜਾਪ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ
छपै छंद त्वै प्रसाद। चक्कर चिहन अर बरन जात अर पात नहन जेह रूप रंग अर रेख भेख। को कह ना सकत केह अचल मूरत अनभव प्रकाश। अमितोज कहिजै कोट इंदर इंदरान साहे साहान गणिजै। त्रिभवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बान त्रिन कहत। त्वै सर्ब नाम कथै कवन कर्म नाम बरनत सुमत पुजंग प्रयात छंद। नमस्तवं अकाले नमस्तवं कृपाले नमस्तं अरूपे नमस्तं अनूपे नमस्तं अपेखे नमस्तं अलेखे नमस्तं अकाये नमस्तं अजाये नमस्तं अगंजे नमस्तं अपंजे नमस्तं अनामे नमस्तं अठामे नमस्तं अकर्मं नमस्तं अतर्मं नमस्तं अनामं नमस्तं अतामं नमस्तं अजीते नमस्तं अपीते नमस्तं अबाहे नमस्तं अटाहे नमस्तं अनिले नमस्तं अनादे नमस्तं अछेदे नमस्तं अगादे नमस्तं अगंजे नमस्तं अपंजे नमस्तं उदारे नमस्तं अपारे नमस्तं सो एकाय नमस्तं अनेकाय नमस्तं अपूते नमस्तं अजूपे नमस्तं निर्कर्मे नमस्तं निर्परमे नमस्तं निर्देशे नमस्तं निर्पेशे नमस्तं निर्नामे नमस्तं निर्कामे नमस्तं निर्ताते नमस्तं निर्काते नमस्तं निर्दूते नमस्तं अपूते नमस्तं अलोके नमस्तं अशोके नमस्तं निर्तापे नमस्तं अथापे नमस्तं त्रिमाने नमस्तं निदाने नमस्तं अगाहे नमस्तं अबाहे नमस्तं त्रिवर्गे नमस्तं असर्गे नमस्तं परपोगे नमस्तं सोजोगे नमस्तं अरंगे नमस्तं अपंगे नमस्तं अगम्मे नमस्तस्तरमे नमस्तं जलाश्रे नमस्तं निराश्रे नमस्तं अजाते नमस्तं अपाते नमस्तं अमजबे नमस्तस्त अजबे अदेशं अदेशे नमस्तं अपेसे नमस्तं निर्तामे नमस्तं निर्वामे नमो सर्वकाले नमो सर्वदयाले नमो सर्वरूपे नमो सर्वभूपे नमो सर्वखापे नमो सर्वथापे नमो सर्वकाले नमो सर्वपाले नमस्तस्त देवाय नमस्तं अपेवाय नमस्तं अजन्मे नमस्तं सुबन्मे नमो सर्वगौने नमो सर्वभावने नमो सर्वरंगे नमो सर्वभंगे नमो काल काले नमस्तस्त दयाले नमस्तं अबरणे नमस्तं अमरणे नमस्तं जरारं नमस्तं कीर्तारं नमो सर्वतन्दे नमोस्त अबंदे नमस्तं निरसाके नमस्तं निर्बाके नमस्तं रहीमे नमस्तं करीमे नमस्तं अनन्ते नमस्तं महन्ते नमस्तस्तरागे नमस्तं सुहागे नमो सर्वसुखं नमो सर्वपोखं नमो सर्वकर्ता नमो सर्वहर्ता नमो जोग जोगे नमो भोग भोगे नमो सर्वदयाले नमो सर्वपाले चाचरी छंद त्वै प्रसाद। अरूप हैं अनूप हैं अजू हैं अपू हैं अलेख हैं अपेख हैं अनाम हैं अकाम हैं अते हैं अपेय हैं अजीत हैं अपीत हैं त्रिमान हैं निदान हैं त्रिवर्ग हैं असर्ग हैं अनिल हैं अनाद हैं अजय हैं अजाद हैं अजन्म हैं अबरण हैं अपूत हैं अपर्ण हैं अगंज हैं अपंज हैं अचूज हैं अचंज हैं अमीक हैं रफीक हैं अतंद हैं अबंध हैं निर्बूज हैं असूज हैं
अकाल है, अजाल है, अल्लाह है, अजाह है, अनंत है, महंत है, अलीक है, निरसरीक है, निरलंब है, असंभ है, अगम है, अजम है, अभूत है, अछूत है, अलोक है, अशोक है, अकर्म है, अपर्म है, अजीत है, अपीत है, अबाह है, अगाह है, अमान है, निदान है, अनेक है, फिर एक है, पुजंग पर्यात छंद, नमो सर्व माने समस्ते निदाने, नमो देव देवे अपेखी अपेवे, नमो काल काले, नमो सर्व पाले, नमो सर्व गौने, नमो सर्व पौने, अनंगी अनाथे निरसंगी परमाथे, नमो पान पाने, नमो मान माने, नमो चंद्र चंद्रे, नमो पान पाने, नमो गीत गीते, नमो तान ताने, नमो नृत नृते, नमो नाद नादे, नमो पान पाने, नमो बाद बादे, अनंगी अनामे समस्ती स्वरूपे, प्रपंगी परमाथे समस्ति बेपूते, कलंकंग बिना ने कलंकी स्वरूपे, नमो राज राजेश्वरं परम रूपे, नमो जोग जोगेश्वरं परम सिद्धे, नमो राज राजेश्वरं परम वृद्धे, नमो शस्त्र पाने, नमो अस्त्र माने, नमो परम ज्ञाता, नमो लोक माता, अपेखी अपरमी अपोगी अपुगते, नमो जोग जोगेश्वरं परम जुगते, नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे, नमो प्रेत अप्रेत देवे सुतर्मे, नमो रोग हर्ता, नमो राग रूपे, नमो साह साहं, नमो पूप पूपे, नमो दान दाने, नमो मान माने, नमो रोग रोगे, नमस्तं इसनानं, नमो मंत्र मंत्रं, नमो जंतर जंतरं, नमो मंत्र मंत्रं, नमो जंतर जंतरं, नमो इष्ट इष्टे, नमो तंत्र तंत्रं, सदा सचदानंद सर्वं परणासी, अनूपे अरूपे समस्तुल निवासी, सदा सिद्ध दा बुद्ध दा वृद्ध करता, अदो उर्द अर्दं अगं ओग हरता, परम परम परमेश्वरं प्रोच पालं, सदा सर्वदा सिद्ध दाता दयालं, अछेदी अपेदी अनामं अकामं, समस्तो पराजी समस्तस्त तामं, तेरा जोर चाचरी शांद, जले हैं थले हैं, अपीत हैं अपेय हैं, प्रभु हैं अजू हैं, अदेश हैं अपेश हैं, पुजंग पर्यात छंद, अगाधे अबाधे आनंदी स्वरूपे, नमो सर्व माने समस्ते निदाने, नमस्तवं निरनाथे, नमस्तवं परमाथे, नमस्तवं अगंजे, नमस्तवं अपंजे, नमस्तवं अकाले, नमस्तवं अपाले, नमो सर्व देशे, नमो सर्व पेशे, नमो राज राजे, नमो साज साजे, नमो साह साहे, नमो माह माहे, नमो गीत गीते, नमो प्रीत प्रीते, नमो रोख रोखे, नमो सोख सोखे, नमो सर्व रोगे, नमो सर्व भोगे, नमो सर्व जीतं, नमो सर्व पीतं, नमो सर्व ज्ञानं, नमो परम तानं, नमो सर्व मंत्रं, नमो सर्व जंत्रं, नमो सर्व दृश्यं, नमो सर्व कृसं, नमो सर्व रंगे त्रिपंगी अनंगे, नमो जीव जीवं, नमो बीज बीजे अखिजे अपिजे समस्तं प्रसिजे, कृपालं स्वरूपे कुकर्मं परणासी, सदा सर्वदा रिद्ध सिद्धं निवासी, चरपट छंद त्वय प्रसाद, अमृत कर्मे अमृत धर्मे, अखल जोगे अचल भोगे, अचल राजे अटल साजे, अखल धर्मं अलख कर्मं, सर्वं दाता सर्वं ज्ञाता सर्वं पाने सर्वं माने, सर्वं प्राणं सर्वं तराणं, सर्वं पुगता सर्वं जुगता, सर्वं देवं सर्वं पेवं, सर्वं काले सर्वं पाले, रुआल छांद त्वय प्रसाद,
ਆਦਿ ਰੂਪ ਅਨਾਦ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨ ਪੁਰਖ ਅਪਾਰ ਸਰਬ ਮਾਨ ਤ੍ਰਿਮਾਨ ਦੇਵ ਅਭੇਵ ਆਦਿ ਉਦਾਰ ਸਰਬ ਪਾਲਕ ਸਰਬ ਕਾਲਕ ਸਰਬ ਕੋ ਪੁਨ ਕਾਲ ਜਤਰ ਤਤਰ ਬਿਰਾਜ ਹੀ ਅਵਧੂਤ ਰੂਪ ਰੇ ਸਾਲ ਨਾਮ ਠਾਮ ਨਾ ਜਾਤ ਜਾਕਰ ਰੂਪ ਰੰਗ ਨ ਰੇਖ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਉਦਾਰ ਮੂਰਤ ਅਜੋਨ ਆਦਿ ਅਸੇਖ ਦੇਸ ਔਰ ਨਾ ਭੇਸ ਜਾਕਰ ਰੂਪ ਰੇਖ ਨਾ ਰਾਗ ਜਤਰ ਤਤਰ ਦਿਸਾ ਵਿਸਾ ਹੋਏ ਫੈਲਿਓ ਅਨੁਰਾਗ ਨਾਮ ਕਾਮ ਬੇਹੀਨ ਪੇਖਤ ਧਾਮ ਹੂਨਹਿ ਜਾਹਿ ਸਰਬ ਮਾਨ ਸਰਬਤਰ ਮਾਨ ਸਦੈਵ ਮਾਨ ਤਤਾਹਿ ਏਕ ਮੂਰਤ ਅਨੇਕ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਨ ਰੂਪ ਅਨੇਕ ਖੇਲ ਖੇਲ ਅਖੇਲ ਖੇਲਨ ਅੰਤ ਕੋ ਫਿਰ ਏਕ ਦੇਵ ਭੇਵ ਨਾ ਜਾਨਹੀ ਜਿਹ ਬੇਦ ਔਰ ਕਤੇਬ ਰੂਪ ਰੰਗ ਨਾ ਜਾਤ ਪਾਤ ਸੋ ਜਾਨੈ ਕਿਹ ਜੇਬ ਤਾਤ ਮਾਤ ਨਾ ਜਾਤ ਜਾਕਰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਬੇਹੀਨ ਚੱਕਰ ਬੱਕਰ ਫਿਰੈ ਚਤਰ ਚੱਕ ਮਾਨ ਹੀ ਪੁਰ ਤੀਨ ਲੋਕ ਚਾਹੁਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਖੈ ਜਗ ਜਾਪਈ ਜਿਹ ਜਾਪ ਆਦ ਦੇਵ ਅਨਾਦ ਮੂਰਤ ਥਾਪਿਓ ਸਭੈ ਜਿਹ ਥਾਪ ਪਰਮ ਰੂਪ ਪੁਨੀਤ ਮੂਰਤ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਅਪਾਰ ਸਰਬ ਬਿਸਵ ਰਚਿਓ ਸੋਯੰ ਭਵ ਗੜਨ ਭੰਜਨ ਹਾਰ ਕਾਲਹੀਨ ਕਲਾ ਸੰਯੁਗਤ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਦੇਸ ਧਰਮ ਧਾਮ ਸੋ ਭਰਮ ਰਹਿਤ ਅਭੂਤ ਅਲਖ ਅਭੇਸ ਅੰਗ ਰਾਗ ਨਾ ਰੰਗ ਜਾ ਕਹਿ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਾ ਨਾਮ ਗਰਭ ਗੰਜਨ ਦੁਸ਼ਟ ਭੰਜਨ ਮੁਕਤ ਦਾਇਕ ਕਾਮ ਆਪ ਰੂਪ ਅਮੀਕ ਅਨ ਉਸਤਤ ਏਕ ਪੁਰਖ ਅਵਧੂਤ ਗਰਭ ਗੰਜਨ ਸਰਬ ਭੰਜਨ ਆਦ ਰੂਪ ਅਸੂਤ ਅੰਗਹੀਨ ਅਭੰਗ ਅਨਾਤਮ ਏਕ ਪੁਰਖ ਅਪਾਰ ਸਰਬ ਲਾਇਕ ਸਰਬ ਕਾਇਕ ਸਰਬ ਕੋ ਪ੍ਰਤਪਾਰ ਸਰਬ ਗੰਤਾ ਸਰਬ ਹੰਤਾ ਸਰਬ ਤੇ ਅਨਭੇਖ ਸਰਬ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਾ ਜਾਨਹੀ ਜਿਹ ਰੂਪ ਰੰਗ ਅਰ ਰੇਖ ਪਰਮ ਬੇਦ ਪੁਰਾਣ ਜਾ ਕਹਿ ਨੇਤ ਭਾਖਤ ਨਿਤ ਕੋਟ ਸਿਮ੍ਰਿਤ ਪੁਰਾਣ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਾ ਆਵਹੀ ਬਹੁ ਚਿਤ ਮਦ ਭਾਰ ਛੰਦ ਤਵੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਣ ਗਨ ਉਦਾਰ ਮਹਿਮਾ ਅਪਾਰ ਆਸਨ ਅਭੰਗ ਉਪਮਾ ਅਨੰਗ ਅਨਭਉ ਪ੍ਰਕਾਸ ਨਿਸ ਦਿਨ ਅਨਾਸ ਆ ਜਾਨ ਬਾਹੁ ਸਾਹਾਨ ਸਾਹੁ ਰਾਜਾਨ ਰਾਜ ਭਾਨਾਨ ਭਾਨ ਦੇਵਾਨ ਦੇਵ ਉਪਮਾ ਮਹਾਨ ਇੰਦਰਾਨ ਇੰਦਰ ਬਾਲਾਨ ਬਾਲ ਰੰਕਾਨ ਰੰਕ ਕਾਲਾਨ ਕਾਲ ਅਨਭੂਤ ਅੰਗ ਅਭਾ ਅਭੰਗ ਗਤਮਿਤ ਅਪਾਰ ਗੁਣ ਗਨ ਉਦਾਰ ਮੁਨ ਗਨ ਪ੍ਰਣਾਮ ਨਿਰਭੈ ਨਿਕਾਮ ਅਤ ਦੁੱਤ ਪ੍ਰਚੰਡ ਮਿਤ ਗਤ ਅਖੰਡ ਅਲਿਸਿਆ ਕਰਮ ਅਦ੍ਰਿਸਿਆ ਧਰਮ ਸਰਬਾ ਭਾਰ ਨਾਢੈ ਅਨ ਡੰਡ ਬਾਢੈ ਚਾਚਰੀ ਛੰਦ ਤਵੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੋਬਿੰਦੇ ਮੁਕੰਦੇ ਉਦਾਰੇ ਅਪਾਰੇ ਹਰਿਅੰਗ ਕਰਿਅੰਗ ਨਿਰਨਾਮੇ ਅਕਾਮੇ ਪੁਜੰਗ ਪ੍ਰਯਾਤ ਛੰਦ ਚੱਤਰ ਚੱਕਰ ਕਰਤਾ ਚੱਤਰ ਚੱਕਰ ਹਰਤਾ ਚੱਤਰ ਚੱਕਰ ਦਾਨੇ ਚੱਤਰ ਚੱਕਰ ਜਾਨੇ ਚੱਤਰ ਚੱਕਰ ਵਰਤੀ ਚੱਤਰ ਚੱਕਰ ਭਰਤੀ ਚੱਤਰ ਚੱਕਰ ਪਾਲੇ ਚੱਤਰ ਚੱਕਰ ਕਾਲੇ ਚੱਤਰ ਚੱਕਰ ਪਾਸੇ ਚੱਤਰ ਚੱਕਰ ਵਾਸੇ ਚੱਤਰ ਚੱਕਰ ਮਾਨਿਆ ਚੱਤਰ ਚੱਕਰ ਦਾਨਿਆ ਚਾਚਰੀ ਛੰਦ ਨਾ ਸਤਰੈ ਨਾ ਮਿੱਤਰੈ ਨਾ ਭਰਮੰ ਨਾ ਪਿੱਤਰੈ ਨਾ ਕਰਮੰ ਨਾ ਕਾਏ ਅਜਨਮੰ ਅਜਾਏ ਨਾ ਚਿੱਤਰੈ ਨਾ ਮਿੱਤਰੈ ਪਰੇ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰੈ ਪ੍ਰਥੀਸੈ ਅਦੀਸੈ ਅਦ੍ਰਿਸੈ ਅਕ੍ਰਿਸੈ ਭਗਵਤੀ ਛੰਦ ਤਵੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਥਤੇ ਕਿ ਆ ਛਿਜ ਦੇਸੈ ਕਿ ਆ ਭਿਜ ਭੇਸੈ ਕਿ ਆ ਗੰਜ ਕਰਮੈ ਕਿ ਆ ਭੰਜ ਭਰਮੈ ਕਿ ਆ ਭਿਜ ਲੋਕੈ ਕਿ ਆ ਦਿੱਤ ਸੋਕੈ ਕਿ ਅਵਧੂਤ ਬਰਨੈ ਕਿ ਬਿਭੂਤ ਕਰਨੈ ਕਿ ਰਾਜੰ ਪ੍ਰਭਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮੰ ਤੁਜਾ ਹੈ ਕਿ ਆ ਸੂਕ ਬਰਨੈ ਕਿ ਸਰਬਾ ਅਭਰਨੈ
के जगतं कृति हैं के छत्रं छत्री हैं के ब्रह्मं स्वरूपाय के अनुभव अनुपाय के आदि अदेव हैं के आप अपेव हैं के चित्रं बेहीन के एकाय अधीन के रोजी रजाकै रहीमै रिहाकै के पाक बेऐब हैं के गैबुल गैब हैं के अफबुल गुनाह हैं के साहान साह हैं के कारण कुनिंद हैं के रोजी देहांद हैं के राजक रहीम हैं के कर्मं करीम हैं के सर्वं कली हैं के सर्वं दली हैं के सर्वतर मान्याय के सर्वतर दान्याय के सर्वतर गौनाय के सर्वतर पौनाय के सर्वतर देशाय के सर्वतर पेशाय के सर्वतर राजाय के सर्वतर साजाय के सर्वतर दीनाय के सर्वतर लीनाय के सर्वतर जाहो के सर्वतर पाहो के सर्वतर देशाय के सर्वतर पेशाय के सर्वतर कालाय के सर्वतर पालाय के सर्वतर हंता के सर्वतर गंता के सर्वतर पेखी के सर्वतर पेखी के सर्वतर काजाय के सर्वतर राजाय के सर्वतर सोखाय के सर्वतर पोखाय के सर्वतर तराणाय के सर्वतर प्राणाय के सर्वतर देशाय के सर्वतर पेशाय के सर्वतर मान्याय सदैवं प्रधान्याय के सर्वतर जाप्याय के सर्वतर थाप्याय के सर्वतर भान्नाय के सर्वतर मान्नाय के सर्वतर इंद्राय के सर्वतर चंद्राय के सर्वं कलिमय के परमं फहिमय के आकल अलामय के साहिब कलामय के हुसनुल वजूह हैं तमामुल रुजू हैं हमेशुल सलामय सलीखत मुदामय गनीमुल सिकस्तय गरीबुल परस्तय बिलंदुल मकानय जमीनुल जमानय तमीजुल तमामै रजूअल निदानै हरीफुल अजीमै रजायक यकीनै अनेकुल तरंग हैं अभेद हैं अपंग हैं अजीजुल निवाज हैं गनीमुल खिराज हैं निरुकत स्वरूप हैं त्रिमुक्त विभूत हैं प्रभुगत प्रभा हैं सुजुगत सुदा हैं सदैवं स्वरूप हैं अभेदि अनूप हैं समस्त पराज हैं सदा सर्व साज हैं समस्तुल सलाम हैं सदैवल अकाम हैं निर्बाध स्वरूप हैं अगाध हैं अनूप हैं उवंग आद रूपे अनाद स्वरूप हैं अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे त्रिवर्गं त्रिबाधे अगंजे अगाधे सुभं सर्व भागे सो सर्वा अनुरागै त्रिपुगत स्वरूप हैं अछिज हैं अछूत हैं किनरकं परनास हैं पृथ्वीउल प्रवास हैं निरुकत प्रभा हैं सदैवं सदा हैं विपुगत स्वरूप हैं प्रजुगत अनूप हैं निरुकत सदा हैं विपुगत प्रभा हैं अनुकत स्वरूप हैं प्रजुगत अनूप हैं चाचरी शांद अपंग हैं अनांग हैं अपेख हैं अलेख हैं अपर्म हैं अकर्म हैं अनाद हैं जुगाद हैं अजय हैं अभय हैं अभूत हैं अदूत हैं अनास हैं उदास हैं अतंध हैं अबंध हैं अभगत हैं विरक्त हैं अनास हैं प्रकाश हैं निचिंत हैं सुनिंत हैं अलेख हैं अदेख हैं अलेख हैं अपेख हैं अटाह हैं अगाह हैं असंभ हैं अगंभ हैं अनिल हैं अनाद हैं अनित हैं सुनित हैं अजात हैं अजाद हैं चरपट छंद त्वय प्रसाद सर्वं हंता सर्वं गंता सर्वं ख्याता सर्वं ज्ञाता सर्वं हर्ता सर्वं कर्ता सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं सर्वं जुगता सर्वं मुक्ता रसावल छंद त्वय प्रसाद नमो नरक नासे सदैवं प्रकाशे
अनंगं स्वरूपे अपंगं विपुते परमाथं परमाथे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विपुते अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे निरपंगी स्वरूपे सर्वंगी अनुपे ना पोतराय ना पुत्रय ना सत्तराय ना मित्रय ना ताताय ना माताय ना जाताय ना पाताय निरसाकं सरीक है अमितो अमीक है सदैवं प्रभा है अजय है अजा है भगवती छंद त्वय प्रसाद के जाहर जहूर है के हाजर हजूर है हमेशुल सलाम है समस्तुल कलाम है के साहिब दिमाग है के हुसनल चिराग है के कामल करीम है के राजक रहीम है के रोजी देहांद है के राजक रहिंद है करीमुल कमाल है के हुसनुल जमाल है गनीमुल खिराज है गरीबुल निवाज है हरीफुल से कन है हिरासुल फिकन है कलंकं परनास है समस्तुल निवास है अगंजुल गनीम है रजायक रहीम है रजायक रहीम है समस्तुल जुबा है के साहिब किरा है के नरकं परनास है बेहस्तुल निवास है के सरबुल गवन है हमेशुल रवन है तमामुल तमीज है समस्तुल अजीज है परं परम ईस है समस्तुल अदीस है अदेशुल अलेख है हमेशुल अपेख है जमीनुल जमा है अमीकुल इमा है करीमुल कमाल है के जुरत जमाल है के अचलंग प्रकाश है के अमितो सुबास है के अजब स्वरूप है के अमितो बेपूत है के अमितो पसा है के आत्म प्रभा है के अचलंग अनंग है के अमितो अपंग है मद उपार चंद त्वय प्रसाद मुन मन परनाम गुण गण मुदाम अर बर अगंज हर नर परपंज अन गण परनाम मुन मन सलाम हर नर अखंड बर नर अमंड अनुभव अनास मुन मन प्रकाश गुण गण परनाम जल थल मुदाम अन छिज अंग आसन अपंग उपमा अपार गत मित उदार जल थल अमंड दिस विस अपंड जाल थाल महंत दिस विस बेअंत अनुभव अनास त्रित धर तुरास आ जान बाहु एकै सदाहु ओंकार आदि कथनी अनाद खल खंड ख्याल गुरबर अकाल घर घर प्रणाम चित चरण नाम अन छिज गात आजिज ना बात अन झंझ गात अन रंज बात अन टुट भंडार अन थट अपार आडीठ धर्म अत ठीठ कर्म अन बरन अनंत दाता महंत हर बोल मना छंद त्वय प्रसाद करुणालय है अर कालय है खल खंडन है मह मंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्ब उबारण है त्रित के तरण है जग के करण है मन मान्या है जग जानिया है सर्वं पर है सर्वं कर है सर्ब पास्या है सर्ब नास्या है करुणाकर है विश्वं पर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंडस है खल खंडस है पर ते पर है करुणा कर है अजपा जप है अथपा थप है अकृता कृत है अमृता मृत है अमृता मृत है करुणा कृत है अकृता कृत है धरणी तृत है अमितेश्वर है परमेश्वर है अकृता कृत है अमृता मृत है अजबा कृत है अमृता मृत है नर नायक है खल कायक है विश्वं पर है करुणालय है
निरिप नायक हैं, सर्ब पायक हैं, भव भंजन हैं, अर गंजन हैं, रिप तापन हैं, जाप जापन हैं, अकलंकृत हैं, सर्वाकृत हैं, कर्ता कार हैं, हर्ता हार हैं, परमात्म हैं, सर्व आत्म हैं, आत्म बास हैं, जास के जास हैं, पुजंग पर्यात चांद, नमो सूरज सूरजे, नमो चंद्र चंद्रे, नमो राज राजे, नमो इंद्र इंद्रे, नमो अंधकारे, नमो तेज तेजे, नमो बृंद बृंदे, नमो बीज बीजे, नमो राज संग ताम संग सांत रूपे, नमो परम तत्तंग अतत्तंग स्वरूपे, नमो जोग जोगे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो मंत्र मंत्रे, नमो ध्यान ध्याने, नमो युद्ध युद्धे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो भोज भोजे, नमो पान पाने, नमो कलह करता, नमो सांत रूपे, नमो इंद्र इंद्रे, अनादं बेपूते कलंकार रूपे, अलंकार अलंके, नमो आस आसे, नमो बांक बंके, अपंगी स्वरूपे, अनंगी अनामे, त्रिपंगी त्रिकाले, अनंगी अकामे, एक अक्षरी चांद, अजय अलय अपय अभय अपू अजू अनास अकाश अगंज अपंज अलख अपख अकाल दयाल, अलेख अपेख अनाम अकाम अगाह अटाह अनाथे परमाथे अजोनी अमोनी ना रागे ना रंगे ना रूपे ना रेखे अकर्मं अपरमं अगंजे अलेखे पूजंग पर्यात छंद नमस्तुल परनामे समस्तुल परनासे अगंजुल अनामे समस्तुल निवासे निरकामं बेपूते समस्तुल स्वरूपे को कर्मं परनासी सुतर्मं बेपूते सदा सचदानंद सतरं परनासी क्रीमुल कुनिंदा समस्तुल निवासी अजायब बिपूते गजायब गनीमे हरियं करियं क्रीमुल रहीमे चत्तर चक्कर वर्ती चत्तर चक्कर भुगते सोयं भव सुबं सर्वदा सर्व जुगते दुकालं परनासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगं बेपूते दुकालं परनासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगं बेपूते वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह एक ओंकार सतगुर प्रसाद पात साहि दसवी त्वै प्रसाद सुवैये सरावग सुध समूह सिधान के देख फिरयो घर जोग जति के सूर सुरारदन सुध सुधाधिक संत समूह अनेक मति के सारे ही देश को देख रहे हो मत को ना देखियत प्राण पति के श्री भगवान की पाए कृपा हूं ते एक रति बिन एक रति के एक रति बिन एक रति के माते मतांग जरे जर संग अनूप उतांग सुरंग सवारे कोट तुरंग कुरंग से कूदत पौन के गौन कौ जात निवारे भारी पुजान के भूप भली बिद नियावत सीस न जात बिचारे एते भय तो कहा भय भूपत अंत कौ नांगे ही पाए पधारे जीत फिराए सब देश दिसान को बाजत ढोल मिरदंग नगारे गुंजत गूढ़ गजान के सुंदर हिंसत ही है राज हजारे भूत भविख भवान के भूपत कौन गणे नहीं जात बिचारे श्रीपत श्री भगवान भजे बिन अंत कौ अंत के धाम सिधारे तीरथ नान दया दम दान सो संजम नेम अनेक विशेख है वेद पुराण कतेब कुरान जमीन जमान सबान के पेखै पौन आहार जति जत धार सबै सो विचार हजार क देखै श्री भगवान भजे बिन भूपत एक रति बिन एक न लेखै सुध सिपाह दुरंत दुबाह सो साज सनाह दुरजान दलैंगे भारी गुमान भरे मन मै कर पर्वत पंख हले ना हलैंगे तोर अरीन मरोर मवासन मातिम तंगन मान मलैंगे श्रीपत श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलैंगे वीर अपार बड़े बरियार अभिचार है सार की धार पछैया
तोरत देश मलिंद मवासन माते गजान के मान मलैया गाड़े गड़ान के तोड़न हार सुबातन ही चक चार लवैया साहिब सिरे सब को सिर नायक जाचक अनेक सुवेक देवैया दानव देव फनेंद निसाचर भूत भविख पवान जपेंगे जीव जिते जल मैं थल मैं पल ही पल मैं सब थाप थपेंगे पुन प्रतापन बाढ़ जैत धुन पापन के बहु पुंज खपेंगे साध समूह प्रसन्न फिरै जग सत्तर सभै अवलोक चपेंगे मानव इंद्र गजिंदर नराधप जौन त्रिलोक को राज करेंगे कोट इसनान गजादिक दान अनेक स्वंबर साज बरेंगे ब्रह्म महेश्वर बिशन सची पात अंत फसे जम फास परेंगे जे नर श्री पत के प्रस हैं पग ते नर फिर न देह धरेंगे कहा भयो जो दो लोचन मूंद कै बैठ रहो बक ध्यान लगायो नात फिरियो लिए सात समुंदरन लोक गयो पर लोक गवायो बास कियो बिखियान सो बैठ कै ऐसे ही ऐसे सो बैस बितायो साच कहो सुन लेहो सबै जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो काहू लै पाहन पूज धरियो सिर काहू लै लिंग गरे लटकायो काहू लख्यो हर अवाची दिशा मह काहू पछाह को सीस निवायो को बुतान को पूजत है पास को मिर्तान को पूजन तायो कूर क्रिया उर्ज्यो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो को बुतान को पूजत है पास को मिर्तान को पूजन तायो कूर क्रिया उर्ज्यो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फत है पात साही दसवी कबेओ बाच बेनती चाओ पई हमरी करो हाथ दै रक्षा पूरन होए चित की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुष्ट सबै तुम कावह वाप हाथ दै मोहे बचावहो सुखी बसै मोरो परिवारा सेवक सिखे सबै करतारा मोर अच्छा निज कर दै करियै सब बैरन कौ आज संघरियै पूरन होए हमारी आसा तोर भजन की रह प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर ना त्याऊं जो बार चाहूं सो तुम ते पाऊं सेवक सिखे हमारे तारिया है चुन चुन सत्तर हमारे मारिया है आप हाथ दै मुझे उबरिया मरण काल का त्रास निवरिया हुजो सदा हमारे पच्छा श्री अस तुज जू करिया हो रच्छा राख लेहो मोहे राखन हारे साहिब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दास कंता काल पाए ब्रह्मा बाप धरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कर बिशन प्रकाशा सकल काल का किया तमासा जवन काल जोगी शिव कियो बेदराज ब्रह्मा जू थियो जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दैत जच्छन उपजायो आदि अंत एकै अवतारा सोई गुरु समझी अहो हमारा नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिन आप सवारी सेवकन को साव गुण सुख दियो सत्रन को पालमो बद कियो घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचर अस थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछानै
घट घट के पट पट के जानै जब उद करख करा करतारा प्रजा धरत तब देह अपारा जब आकरख करत हो कबहू तुम मैं मिलत देह धर सबहू जित बदन सृष्ट सब धारै आप अपनी बूझ उचारै तुम सब ही ते रहत निरालम जानत बेद भेद अर आलम निरंकार निरिबकार निरलंब आदि अनिल अनाद असंभ ताका मूढ़ उचारत भिदा जाको भेव न पावत बिदा ताको कर पाहन अनुमानत महामूढ़ कछ भेद न जानत महादेव कौ कहत सदा सेव निरंकार का चीनत नह भिव आप आपुनी बुद्ध है जिति बरनत भिन्न भिन्न तुहे तेती तुमरा लखा न जाए पसारा केह बिद सजा प्रथम संसारा एकै रूप अनूप सरूपा रंक भयो राव कही भूपा अंडज जेरज सेतज किनी उत भुज खान बहुर रच दिनी कहू फूल राजा हुआ बैठा कहू फूल राजा हुआ बैठा कहू सिमट भयो शंकर एकैठा सिगरी सृष्ट दिखाए अचम भव आद जुगाद स्वरूप सोयंग भव अब रक्षा मेरी तुम करो सिखे उबार असिखे संघरो दुष्ट जित उठवत उत्पाता सकल मलेच्छ करो रान काता जे अस तुज तब सरनी परे तिन के दुष्ट दुखित हुवै मरे पुरख जवन पाग परे ते हारे तिन के तुम संकट सब टारे जो काल को एक बार त्या है ताके काल निकट नह है रक्षा होए ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट टरै तत्काला कृपा दृष्ट तन जाहे निहार हो ताके ताप तनक मह हर हो रिद सिद्ध कारमो सब होई दुष्ट छाह छुवै सकै न कोई एक बार जिन तुमै संभारा काल फास ते ताहे उबारा जिन नार नाम तिहारो कहा दारिद दुष्ट दोख ते रहा खड़ग केत मैं सरण तिहारी आप हाथ दै लिहो उबारी सर्ब ठौर मोहो सहाई दुष्ट दोख ते लिहो बचाई कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूरन सुबराता किल बिख सकल देह को हरता दुष्ट दोखियन को छै करता श्री अस तुज जब भय दयाला पूरन करा ग्रंथ तत्काला मन बांछत फल पावै सोई दुख न तिसै व्यापत कोई अडिल सुनै गोंग जो याहे सुरसना पावई सुनै मूढ़ चित लाए चतुरता आवई दुख दर्द भाओ निकट न तिन नर के रहै हो जो या की एक बार चाओ पई को कहै चाओ पई संबत सत्र है सहस पनिजै अर्ध सहस पुन तीन कहिजै भादरव सुदे अष्टमी रविवारा तीरस तुदरव ग्रंथ सुधारा सुवैया पाए गहे जाब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आनेओ राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहै मत एक ना मान्यो सिमृत शास्त्र वेद सबै बहु भेद कहै हम एक ना जान्यो श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं ना कहियो सब तो हे बखान्यो दोहरा सगल द्वार कौ छाड़ कै गहयो तुहारो द्वार बाहे गहे की लाज अस गोबिंद दास तुहार सगल द्वार कौ छाड़ कै गहयो तुहारो द्वार
ਬਾਹੇ ਗਹੇ ਕੀ ਲਾਜ ਅਸ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਤੁਹਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਨੰਦ ਭਇਆ।

दुख सब विसारना अंगीकार ओह करे तेरा कार्य सब सवारना सबना गला समरथ स्वामी सो क्यों मन हो विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहिबा क्या नाही घर तेरा घर ता तेरा सब किछ है जिस देहे सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिन कै मन वसया वाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही घर तेरा साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाईया कर सांत सुख मन आए वसया जिन इच्छा सब पुजाईया सदा कुर्बान कीता गुरु विटा हो जिस दिया एह वडे आईया कह नानक सुनहो संत हो शब्द धरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द तित घर सुभागै घर सुभागै शब्द वाजे कला जित घर धारिया पंच दूत तुद वास कीते काल कंटक मारिया तुर कर्म पाया तुद जिन काउ से नाम हर कै लागे कह नानक तह सुख हुआ तित घर अनहद वाजे साची लिवै बिन देह निमाणी देह निमाणी लिवै बज हो क्या करे वेचारिया तुद बाज समरथ कोय नाही कृपा कर बनवारिया एस नाओ होर थाओ नाही शब्द लाग सवारिया कह नानक लिवै बज हो क्या करे वेचारिया आनंद आनंद सब को कह आनंद गुरु ते जानिया जानिया आनंद सदा गुर ते कृपा करे प्यारिया कर कृपा किल विख कटे ज्ञान अंजन सारिया अंदर हो जिन का मोह तुटा तिन का शब्द सचै सवारिया कह नानक एहो आनंद है आनंद गुर ते जानिया बाबा जिस तू देहे सोई जान पावै पावै ता सो जान देहे जिसनो होर क्या कर है वेचारिया एक भरम भूले फिर है दह देस एक नाम लाग सवारिया गुर प्रसादी मन भया निर्मल जिना भाणा पावै कह नानक जिस देहे प्यारे सोई जान पावै आवहो संत प्यारे हो अकथ की कर है कहानी कर है कहानी अकथ केरी कित द्वारै पाईऐ तन मन धन सब सौप गुर काउ हुकम मन्या पाईऐ हुकम मन्हो गुरु केरा गावहो सच्ची बाणी कह नानक सुनहो संत हो कथे हो अकथ कहानी ए मन चंचला चतुराई किनै ना पाया चतुराई ना पाया किनै तू सुन मन मेरिया एह माया मोहनी जिन एत भरम भुलाया माया ता मोहनी तिनै कीती जिन ठगौली पाईया कुर्बान कीता तिसै विटहो जिन मोह मीठा लाया कह नानक मन चंचल चतुराई किनै ना पाया ए मन प्यारिया तू सदा सच संभाले एहो कुटंब तू जे देखदा चलै नाही तेरै नाले साथ तेरा चलै नाही तिस नाल क्यों चित लाईऐ ऐसा कम मूले ना कीचै जित अंत पछोताईऐ सत गुरु का उपदेस सुन तू होवै तेरै नाले कह नानक मन प्यारे तू सदा सच संभाले अगम अगोचरा तेरा अंत ना पाया अंतो ना पाया किनै तेरा अपना आप तू जान हे जी जंत सब खेल तेरा क्या को आख वखानै आखह ता वेखह सब तू है जिन जगत उपाया कह नानक तू सदा अगम है तेरा अंत ना पाया सुर नर मुन जन अमृत खोज दे सो अमृत गुर ते पाया पाया अमृत गुर कृपा किनी सच्चा मन वसाया।

नदरियाया गुर प्रसादी बुझिया जा वेखा हर एक है हर बिन आवरना कोई कहे नानक एह नेत्र अंध से सतगुर मिलया दिब दृष्ट होई ए सरवण हो मेरे हो साचै सुनने नो पठाए साचै सुनने नो पठाए शरीर लाए सुनहो सत बाणी जित सुनी मन तन हरिया हुआ रसना रस समाणी सच अलख वेडाणी ताकि गत कही ना जाए कह नानक अमृत नाम सुनहो पवित्र होवा हो साचै सुनने नो पठाए हर जियो गुफा अंदर रख कै वाजा पवन वजाया वजाया वाजा पौन नौ द्वारे प्रगट किए दसवा गुप्त रखाया गुरद्वारे लाए भावनी इकना दसवा द्वार दिखाया तह अनेक रूप नाओ नाव निद तिस दा अंत ना जाई पाया कह नानक हर प्यारे जियो गुफा अंदर रख कै वाजा पवन वजाया एहो साचा सोहेला साचै घर गावहो गावहो ता सोहेला घर साचै जिथै सदा सच त्याव हे सचो त्याव है जा तुद भाव है गुरमुख जिना बुझाव हे एहो सच सबना का खसम है जिस बक्से सो जान पाव हे कह नानक सच सोहेला सचै घर गाव हे अनद सुनहो वड भागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल वेसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन भये सरसे पूरे गुर ते जानी सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया भार पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तुरे सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया भार पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तुरे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की।

समुंद सागर नीर भरिया तेते अवगन हमारे दया करहो किछ मेहर उपावहो डुबदे पत्थर तारे जियाड़ा अगन बराबर तपै पीतर वगै काती प्रणवत नानक हुकम पछाणै सुख होवै दिन राती सुखहो टल गुर सेविया अहनिस सहज सुभाए दर्शन परसिया गुरु कै जन्म मरण दुख जाए होवै सिफत खसाम दी नूर अरसहु कुरसहु झटिया तुद डिठे सच्चे पाते साह मल जन्म जन्म दी कटिया सज्जन सच्चा पाते साह सिर साहां दै साहो जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा वेसा हो।

महसूस करना, श्वास भानु आंदा गुरु महसूस करना, इस तरह अंतर्गत सास ग्रास सिमरन विच ध्यान लाओ जी, जिन्हां नूं नाम नहीं सुनदा। कृपा करके नेत्र बंद रखने आ, दो तीन मिनटां मगरों फिर आपां रसना नाल जपांगे जीओ।

अंध कूप मह पतत बिकराल, नानक काढ़ ले हो प्रभ दयाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साहिब कमाल, हाजरा हजूर, जहरा जहूर, सर्ब कला भरपूर, जुगो जुग अटल, जबर शतर तख्त दे मालक, सर्ब सांझी वालता दा उपदेश देने वाले, समुची मानवता नूं कलावे विच लैण वाले, धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी दे अंदर सजे हुए अमृत वेले दे सुंदर दरबार अंदर, पावन अस्थान गुरुद्वारा दशमेश कल्चर सेंटर जी दे पावन अस्थाना ते अमृत वेले दे दीवान दियां हाजरियां भर रहे समूह माई भाई सतसंगी जनों गुरमुख प्यारियो, सतगुरु जी की अपार कृपा का सदका गुरुदेव जी दे बख्शे हुए उद्दम की बदौलत आप जी अमृत वेले की संभाल करदिया होया इशनान पानी करके तैयार बर तैयार होके दूरों नेड़ियों चल के गुरु चरणा विच हाजरियां भरदिया होया गुरु सवारे सन्मान योग कीर्तनिया पासों भाई गुरजीत सिंह सचखंड श्री हरिमंदर साहिब उन्हां दे कीर्तनी जत्थे पासों आप जी ने पावन बाणी रब्बी बाणी श्री आसा की बार दे कीर्तन दा आनंद माणे है। उपरंत पावन बाणी दी जो लड़ीवार कथा विचार चल रही है, खास करके सुखमनी साहब जी दी पावन बाणी दी विचार चल रही है, उस लड़ी तहत आप जी ने सुखमनी साहब जी दी चौथी अष्टपदी दा चौथा बंद सरवण कीता है। आओ आपां जिथे गुरबाणी कीर्तन दा आनंद माणे है सीमित समय दे अंदर सतगुरु जी दे पावन शब्द दी उपदेश दी विचार दे नाल जुड़िए। की कृपा कर रहे ने सतगुरु अज दे इन्हां पावन बचना दे राही विचारां दी सांझ पाउण तों पहलां एक बार सारी संगत जो गुरु चरणा विच सुशोभित है जां सिद्धे प्रसार राही जुड़ी हुई है प्रेम नाल सब तों पहलां रसना दी पवित्रता वास्ते उच्चारण करियो सारे आखो।

जैसे दर्पण देव सूर सन्मुख रखै पावक प्रगास होत किरण चरित्र कै। जैसे दर्पण देव सूर सन्मुख रखै

जीवन आनंद सुत उदत बचित्र कै सत गुर दरस परस बिगसत सिख प्राप्त निधान ज्ञान पावन पवित्र कै सत गुर दरस परस बिगसत सिख

गुरु ग्रंथ साहब जेडे अज सरूप ने प्रिंट होंगे ने उन्होंने 638 अंग ते सोरठ राग का शब्द सी। सोरठ महला तीजा दो तुकी निगुणियां नूं आपे बख्श लए भाई सतगुर की सेवा लाए। सतगुर की सेवा उत्तम है भाई राम नाम चित लाए। हर जीव आपे बख्श मिलाए हम गुणहीन अपराधी भाई पूरे सतगुर लए रलाए। हुण वेखो हुक्मनामा जदों भी लिया जांदा है गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सानू साडी अरदास मुताबक अपना हुक्म सुणाउंदे ने। गल सिख नूं समझण दी लोड़ है। हर एक शब्द विच कोई ना कोई भावें एक पंक्ति होवे इशारे मात्र साडे मन दी दुविधा दा हल गुरु ग्रंथ साहिब करदे ने हुक्मनामे द्वारा। इतिहास विच हुक्मनामिआं दी वी एक विलक्षण बात है। जदों हरिमंदर साहिब हमला होया 1984 विच ते 6 जून तो बाद एक दो दिन प्रकाश ना होया ते शायद जे मैं ना भुलां ते 8 जून नूं प्रकाश होया। जिस दिन प्रकाश कीता गया ते सतगुरु सच्चे पातशाह गुरु ग्रंथ साहिब महाराज ने सिखां दे डोल दे मनां नूं हुक्मनामे दे रूप विच एक दिलासा ते धीरज दिता। शब्द आया सी किस हो जाची किस आराधी जां सब को कीता हो सी जो जो दिसै वड्डा वडेरा सौ सौ खाकू रल सी। उसे दिन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के हुक्म राही इंदिरा गांधी की मौत के वरंट जारू हो गए सन। जिदन इंदिरा गांधी मारी गई 31 अक्तूबर वाले दिन उस दिन भी हुक्मनामा आया सी भगतां दी सदा तू रखदा हर जियो धुर तू रखदा आया प्रहलाद जन तुद राख लए हर जियो हरनाक्ष मार पचाया। बस हरनाक्ष ते इंदिरा विच फर्क कोई नहीं सी। इंदिरा गांधी उसे दिन मारी गई। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज बोल के दसदे ने सिखो अज जे असीं वेखदे आं आले दुआले सिख गुरुद्वारे आउंदा जरूर है अरदास भी करदा पर अरदास करन तों बाद भी मन विच उन्ना ही चिंता उन्नी टेंशन है जिनी अरदास करन तों पहलां सी। फिर गुरुद्वारे आउण दा की फायदा जे सिख ने अपनी चिंता गुरु ग्रंथ साहिब दे अगे मत्था टेक के छड्डी नहीं। अरदास करन तों बाद भी जे यकीन नहीं आया कि गुरु मेरे कारज आप रास करेगा फिर तो साडा रब ही राखा है ना। जे सिख दा गुरु ग्रंथ साहिब उपर यकीन ते भरोसा होवे मैं ये नहीं कह रहा कि साडी कौम नूं भरोसा नहीं भरोसा है पर वड्डी गिणती साडे विच उहनां लोकां दी भी है जिहड़े गुरुद्वारे भी नेम नाल आउंदे ने मुआफ करना भेटावां भी अर्पण करदे ने बाणी भी पढ़दे ने सुणदे ने पाठ करवाउंदे ने सेवा करदे ने पर ज्योतिषियां कोल जाके टेवे भी बनवाउंदे ने सियाणियां तों भी पुछदे ने धी पुत दा विआह करना है साडी कुड़ी मंगलीक तां नहीं। हैरानी दी बात यह बीबियां साडियां नूं पुछिया जाए कि मंगलीक किस नूं कहिंदे ने पता इन्हां नूं कख भी नहीं। गंडमूल पैंचकां ब्राह्मणां ने दस दित्तियां श्राद्ध उत्तर आए श्राद्ध विच विआह नहीं करना यह साडियां बीबियां नूं सारा पता है। गुरु रहमत करे पर गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बाणी ते असीं ओट लियाईए बाणी नूं पढ़न दे नाल नाल समझ के बाणी मुताबक अपना जीवन जीउण दी कोशिश करिए। मैं मुआफी चाहवांगा गल गुरु ग्रंथ साहिब दे हुक्मनामे दी आई जदों हुक्मनामा सुनिया पुजारी भी मन गए कि हां हुण अरदास भी होवेगी ते कड़ा प्रसाद भी प्रवान होवेगा। तको जरा हरिमंदर साहिब दे अंदर गुरु ग्रंथ साहिब महाराज ने जेड़े ब्राह्मणवादी रीतियां मुताबक चलन वाले पुजारी सन उन्हां दा हंकार कुछ

सिद्धान दस अष्ट सिद्धान ठाकुर कर तल धरिया जन नानक बल बल सद बल जाइए तेरा।

वह सब त्या वह तुझ जी हर सच्चे सिर जनहारा। सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दा तारा। हर त्या

तुद आपे श्रेष्ठ सब उपाई जी, तुद आपे सिरज सब गोई, जन नानक गुण गावे करते के जी, जो सब सह

जिसनो तू जानाए है सोई जन जाने, हर गुण सद ही आख वखाण। जिन हर सेव्या तिन सुख पाया, सहजे

जन नानक गुरमुख प्रगट हुए आसा महला पहला। तित सर वरड़ै भईले निवासा पानी पावक तिन्हें किया पंक जो मोह।

कोई अवर न त्याऊं, जो वर चाहूं सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारी है। आप हाथ दे मुझे उबरिय, मरण काल का त्रास निवरिय। हुजो सदा हमारे पच्छा, श्रीअस तो जुजू।

कर बिसन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जू थियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैंत जच्छन उपजायो।

पछानै, घाट घट के पट पट की जानै। जब उदकर्ख करा कर तारा, प्रजा धरत तब देह अपारा। जब आकर्ष करत हो कबहू, तुम मैं मिलत देह धार सबहू। जेते बदन सृष्ट सब तारै, आ

प्रण काता जे अस तुझ तब सरनी परे तिनके दुष्ट दुखित हुआ मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार त्यै है ताके काल निकट नह ऐ है रच्छा हुए ताहे सब काला दुष्ट रिष्ट टरे तत्काला कृपा दृष्ट तन जाहे निहर हो ताके ताप तनक मह हर हो रिद सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट छा छो सके न खोई एक बार दिन तुम्हें संभारा काल फास्ते ताहे उबारा जिन नर नाम तिहारो कहा दारिद दुष्ट दोख ते रहा।